पेशतर दो तरफा इंतहबात दे रहे हैं और इलाके गुवर्नर ने हफ्ते को कहा है यूक्रेनी ड्रोन्स ने स्मारा इलाके में रूसी ऑनलाइन रिटेलर ओजोन के एक सनती इदारे और एक गोदाम को निशाना बनाया। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की ने इसराइल वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ की गई बातों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा वो तारीखी हकायक सियासी संजीदगी से आ रही हैं। जुमे को एक्स पर जारी करते एक बयान में तुर्की महकमा इत्तला'आत ने कहा इन बयान में इस इंसानी की मायूसी झलकती है जो जंगी जराय इंसानी सोच जराइम के लिए जवाबदेही से बचने की दर पे है। डायरेक्टरेट ने इन तबसरों को इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उनके साथियों की जानिब से अपनाई जाने वाली सस्ती सियासत का हिस्सा करार दिया जिसका जज्वी मकसद भी फायदा हासिल करना है। महकमे के मुताबिक ऐसे हर बिना तो इसराइली माशरत में ना वसी खत्ते में ना बैन अल-अक़वामी बरादरी में ना ही तुर्की में कोई वक़्त रखते हैं। डायरेक्टर मजीद गाय तफसील इस बात की अक्कासी करते हैं तुर्की की पोजिशन नाइंसाफी के सामने एर्दोगान के खामोश न रहने की पॉलिसी ने एक ऐसे इंसान को इज़्तिराब में मुबतला कर दिया है जिसे बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इदारों के सामने नशील कुशल के इंतजाम का सामना है। इसने खबरदार किया इसराइल का इंतहाबी मुहिम बदतरीज का जिम्मेदाराना सिक्योरिटी पर मबनी अवामी पॉपुलिज्म धमकियों की बढ़ती सियासत से तश्कील पा रही है। डॉक्टर ने कहा नेतन्याहू इस्लाम की तुर्की को नया खतरा जाहिर करने की कोशिश भी इसी सस्ती सियासत का हिस्सा है। इसने इंतबाह दिया है दाखिली सियासी मुकाबले के लिए कशीदगी पैदा करने से न सिर्फ इसराइली माशरे बल्कि इलाकई और आलमी अमन इस्तेहकाम को भी संगीन खतरा लाहक हो सकते हैं। इसमें मजीद कहा गया कि तुर्किया माजी की तरह जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ा रहेगा। हमारे खत्ते में अमन इंसाफ इस्तेहकाम का पुख्ता दिफा करेगा चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। इसराइल मीडिया के मुताबिक इसराइल सिक्योरिटी अहलकार ने खबरदार किया है वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ज़ेड फाइव इसराइल कार्ड्स की जानब से तुर्की के खिलाफ जारहाना सियासी तकारीर गैर जरूरी कशीदगी का बायस बन सकती हैं। चैनल 12 ने जुम्मे को रिपोर्ट किया इंतबाह नेतन्याहू हुकूमत के 27 अक्टूबर को शेड्यूल कैंसल इंतखाबात से पेशतर अंकरा के खिलाफ बयान में तेजी आने के बाद दिया गया। चैनल के मुताबिक कई सिक्योरिटी अहलकार ये तरजीह देते हैं कि तुर्की के साथ कशीदगी को वसी पाने के तसादम की तरफ न धकेला जाए। नेतन्याहू उनकी लिक्विड पार्टी ने इंतहाबी तकारीर मुहिम में तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान को बार बार निशाना बनाया है। चैनल 12 ने कहा इसराइल फौज ने मंगल के सुबह सवेरे अबू अल दहोर फौजी वाइटे के शिमाल मरबी शाम पर हमला करने के हक में दबाव डाला था जो तुर्की के सिरा से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक्य है। इस चैनल के मुताबिक तहम बार सिक्योरिटी अहलकार चाहते थे कि हमला तो जो मरकज से दूर रखा जाए सरकारी बयान में इसका ज्यादा जिक्र न हो। इसने कहा कि अहलकारों ने हमले के बाद नेतन्याहू कार्ड्स के थे अवामी बयान को भी खुशायंद नहीं समझा। दरअसल जुम्मे को तुर्की अलजसायर इंडोनेशिया और लबनान मलेशिया मोरितानिया पाकिस्तान फलस्तीन कतर सऊदी अरब सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने एक मुश्तरक बयान में कहा इसराइली हमले शाम के खुद मुख्तारी इलाकई सालमियत और सियासी यकजहती की सरी खिलाफ वर्जी थे। इस जुम्मे को तुर्की ने ऐलान किया इसने गजा जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के कारकुनों के खिलाफ इस हमले के हवाले से नेतन्याहू दीगर मुद्दियान के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस की दरख्वास्त दायर की है। एक फौजी तर्जमान ने हफ्ते को कहा ईरानी फौज ने अपने फौजी नजरिए को दिफा से जराना मौकफ की तरफ मुंतकिल कर दिया है। इसने इसका हवाला मुल्क की हालिया जंगों से हासिल शुदा स्पार्क बताया है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने राष्ट्रीय खबरसा एजेंसी इदना को बताया कि तब्दीली बदतरीज इन्हीं दो जंगों के दौरान हुई जिन्हें उन्होंने 12 रोजा और 40 रोजा जंगें करार दिया। अक्रमीनिया ने कहा हमारे मुल्क का फौजी नजरिया माजी में दिफाई था लेकिन बदतरीज इन दोनों जंगों के दौरान हमने देखा कि फौजी नजरिया दिफाई मौकफ से हमला मौकफ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। उनका यह तब्दीली हमलों के जवाब में तेज तर वसी तरह अमल और पेश की कार्रवाई में जाहिर होती है। अक्रमीनिया ने कहा फौज ने एक मनसूबा भी तैयार किया है जो ईरानी सरजमीन पर जमीनी दर अंदाजी की सूरत में अमेरिकी फौजों को हला के गिरफ्तार करने पर इनाम देता है। उन्होंने कहा मनसूबे के तहत मुसलह फौज के अरकान या शहरी जो कानूनी तौर पर शिकार के असले के हामिल हों ईरान में दाखिल होने वाले अमरीकी फौजों को हला के गिरफ्तार करने पर 5 बिलियन तुमन तकरीबन $26,000 हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा यह कार्रवाई कोई और करती है तो इनाम दोगुना कर दिया जाएगा। उनका फौज इसके अलावा इस्तेमाल होने वाले हथियार को इसकी कीमत के दोगुने पर खरीद लेगी। इस माल के नाम से एक फौजी म्यूजियम में फूस करेगी और हीरो को इसी किस्म के मुतबादल हथियार फ्राहम करेगी। अक्रमीन ने यह भी दावा किया खत्ते अमरीकी असर रसूख तेज से कम हो गया है। इसकी मिसाल के तौर पर उन्होंने सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान की जान से वॉशिंगटन से आजाद तौर पर कायम करता एक दिफाई व सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हवाला दिया। उनका मुस्तकबिल में इसके मौसर होने से कतई नजर

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: कौमी दारा पर अफाल इंतजाम का कहना है कोलंबियम जलसे के बायस हलाकतों की तादाद 321 तक पहुंच गई, जबकि बोगोटा ने इंसानी इमदाद भेजने पर अंकरा का शुक्रिया अदा किया। UNGRT ने जुम्मे को एक्सपर्ट पोस्ट में कहा 257 अफराद लापता हैं, जबकि 2,84,185 अफराद जो 1,46,188 खानदानों की नुमाइंदगी करते हैं इस आफत से मुतासर हुए हैं। आफत के इंतजामी इदारे के मुताबिक ताजा 3 दादोशुमार कोलंबिया के 15 सूबों और 474 बल्दियात का इहाता करते हैं। अब तक तकरीबन 31,445 घर तबाह, जबकि 1,63,884 नुकसान जदे हैं। मजमुई तौर पर 467 इमारतें गिर चुकी हैं, ज्यादातर काली और पेरेरा में वाक़ हैं। दूसरी तरफ कोलंबिया ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भेजने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कोलंबिया की वजारत खारजा ने एक्सपोज पर कहा हमने तुर्किया की तरफ से जल्जे से मुतासर अफराद के लिए रवाना करता इंसानी इमदाद वसूल कर ली है। वजारत ने बताया इस खेप में 1 मेट्रिक टन से ज्यादा खुराक, 9 से ज्यादा कम्बल, 450 किलोग्राम अद्वियात शामिल थी। वजारत ने कहा हुकूमत तुर्किया अवाम के ताम कोलंबिया के लिए इनके अज़्म के शुक्र गुजार हैं। फलस्तीनियों को एक नकबा का सामना है। फलस्तीनी सियासतदान मुस्तफ़ा बरकोती ने खबरदार किया है कि मकबूसा मगरबी किनारे 1948 के बाद से अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि इसराइल इलाक की तरफ पड़ रहा है। बरकोती ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है फलस्तीनियों को इनकी ज़मीनों से बेघर करने के लिए गैर कानूनी बस्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, इस खतरे को नए नकबा के तौर पर बयान किया। बरकोती के तबसरा बातकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद इसराइल पाबंदियों के दरमियान आया है। टिकटॉक ने अमरीकी महकमा इंसाफ के एक मुकदमे को निपटाने के लिए $400 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें इल्जाम था कि कंपनी में फाकी बच्चों की प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। महकमा इंसाफ ने जुम्मे को कहा टिकटॉक फौरी तौर पर $300 मिलियन अदा करेगा और मजीद $100 मिलियन के बाद अदा किए जाएंगे, जबकि इसके पेशरो म्यूजिकल ली के खिलाफ एक सबका कैंसिल डेकरी को मंसूख कर दिया जाएगा। अमरीकी माउन टानी जनरल स्टैनले ई वुडर जूनियर ने एक बयान में कहा फैसला अमरीकी बच्चों वालदेन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। महकमा ने कहा यह चीज बच्चों के लिए हिफाजती इकदाम को मजबूत करेगा और कंपनी को सार्फिन की जाती मालूम के तहफ़ का जिम्मेदार ठहराने में मदद देगा। 2024 के मुकदमे में इल्जाम था टिकटॉक और बाइट डांस ने एक वफाकी कानून के खिलाफ वर्जी की जो बच्चों को अदतना एप्स वेबसाइट्स को 13 साल से कम उम्र सार्फिन की जाती मालूम जमा करने से पहले वालदेन की रजामंदी हासिल करने का पाबंद करता है। फ्रांसिस सदारती उम्मीदवार मुदाखलत कार्रवाई का हदफ है, जिनके

बारे में ख्याल किया जाता है वो रूसी निषाद हैं। फ्रांसिस दर्द उम्मीदवार गैब्रियल अतल को दो नई मुश्तबे रूसी हमारे याफ्ता मुदाहती कार्रवाई में निशाना बनाया गया, जिससे गुज़िश्ता दो हफ्ते में रिपोर्ट करता कार्रवाई की कुल तथा चार हो गई। BFM TV ने रिपोर्ट किया जाली खबरें अखबार की सुर्खियां गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बदनवानी का इल्जाम आयद किया गया है और अतल की सेहत के बारे में खदशात हैं। AI से तैयार करता वीडियो में जराना खाके भी शामिल थे। जैसे जैसे फ्रांसिस दार्ती इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, देकर मुमकिन दार्ती उम्मीदवारों को भी इसी तरह की मुहिमात का निशाना बनाया गया है, जिससे गैर की मुदाखलत के खदशात बढ़ रहे हैं। और नौजवान इंजीनियर्स खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम की नुमाइश कर रहे हैं। नौजवान तुर्क इंजीनियर्स टेक्नोफेस्ट ब्लू होम लैंड में खुद मुख्तार ज़रे आप टेक्नोलॉजीज की नुमाइश कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के मनसूबों को ऑपरेशनल दिफाई निज़ाम में तब्दील कर रहा है। फाइनेस्ट में ज़रे आप रॉकेट गाड़ी खुद मुख्तार टोरपेडो तैयार करने वाली टीमें शामिल हैं। टीमें तुर्किया की बढ़ती दिफाई सनत में अपना हिस्सा डाल रही हैं, जबकि अमनी तजर्बा भी हासिल कर रही हैं। चार रोजा इवेंट में तुर्क बहरी प्लेटफॉर्म, बगैर पायलट के निजाम, हवाई जहाज, फजाई दिफाई टेक्नोलॉजी और मिसाइल भी शामिल हैं। ये नुमाइश बहरी दिफाई शोबे में तुर्किया की उभरती हुई सलाहियतों को उजागर करती है। इसके साथ ही सदाई तुर्किया से खबरें खत्म हुई। سامنے ہم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب ترکیہ کی مایناز گلوکارہ زینب باستی فریمن کے آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں، گانے کے بول ہیں یا

आपने इसके बारे में नज़मों में जरूर पढ़ा होगा, खुशबू में महसूस किया होगा, बागात में देखा होगा। क्या आपको इसका जायका चखने का इत्तफाक हुआ है? गुलाब आपके तस्वर से भी कहीं बढ़कर है। यह हजारा सालों पर महित एक लज्जत शफा बख्श इलाज और रस्म रवाज भी है। एक फूल का तस्वर करें जो नज्मों का मौजू रहा है, तस्वीरों का मौजू खुशबू का मंबा रहा है। इसकी महक एक शहर की पहचान बन चुकी है। इसकी रंगत इश्क मोहब्बत की अलामत है, जहां इस तारीफ का मालिक गुलाब का फूल ही है। लेकिन आज हम आपको गुलाब के एक ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे जिससे शायद आप भी मारूफ ना हो, यानी गुलाब बतौर खुराक। तुर्की की अक्तेनिस यानी मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर शेमा नूर गणेश की राय से भरपूर और टीआरटी खबर के लिए और पेजरिकली की तरफ से कलम बंद करदा मजमून से तारीफ पेशे खिदमत है। गुलाब एक कदीम फूल है जिसका तल्लुक रोज़ेसिया पौधों की फैमिली से है। इसकी सैकड़ों कुदरती किस्में हजारों की तादाद में हाइब्रिड अकसाम है। तुर्की में इसकी डेढ़ों अकसाम पैदा होती हैं। सफेद गुलाब, क्रिस्प रोज, रोज शिप, एवर ब्लूमिंग रोज, मकामी गुलाबी गुलाब, शिलांग गुलाब वगैरह वगैरह, और खासकर दुनिया भर मरूफ स्पार्टा गुलाब। शहर स्पार्टा की पहचान गुलाब ही है। त्यौहार हर साल मुनक्की तो तय, खेत गुलाबी रंगों में डुबोए जाते हैं, लेकिन गुलाब की अहमियत अब सिर्फ लैंडस्केपिंग और कॉस्मेटिक्स तक महदूद नहीं रही। हालिया वर्षों में इसे जायके के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। शेमा नूर गणेश का कहना है कि गुलाब की इंसानों को इतने अरसे तक अपने शहर में कैद करने की कई अहम वजूहत हैं। इसके खुशबूदार साथ जो तालों पर देर पा असर छोड़ती है, इसकी जहरी शक्ल जो पेशकश को बढ़ाती है, और इसकी मुनफरद खुशबू। इनके अलावा इसके फेनोलिक और बायो एक्टिव अज्जा की बदौलत हिफ्जान सेहत के खास गुलाब को बादशोर सार्फिन के लिए खास तौर पर पुरकशिश बनाता है।